अकथ कथा हर नाम। रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावै, भज गुरमत हर राम राम। सुन मन

0: झाप किसे दे किचने सब चले चला जिन तू मेले प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए
1: जन नाम
0: सतगुरु पेटे हर नाम तेरा।

0: जलतजियां पूरियां लो आकारा का
1: नानक भगता पुख शलान सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती सदा आनंद रहे।

0: स्पष्ट है, मुकुरमा है, जैसे छाय जैसे गी हर बसे नरंतर कठी हो तो पाई बाहर भीतर एक
1: दान
0: एक गुरु ज्ञान बताई जन नानक गुर आपा जी ने जन नानक गुर आपा जी ने मिटे न परम की काई मैं मूर्ख जान

0: अरबी तुर्की पारसी हो कहू पहल विपस्त विशेष करती कहू देश
1: कहू राज विद्या।

घर घर ए हो पहुंचा सदरे नित पवन ए शब्दा तो नित ही पै रही हन असी सुनिया अनसुनिया कर देंदे हां जदों कोई मनुख इस संसार तो जा रहा हुंदा है कोई अर्थी जा रही हुंदी है ओ सानू चेता करा रहा हुंदा है ए मनुख एक दिन तेरे ते भी ऐसा आएगा वो भी सदरे दे रहे दस रहे जदों मनुख सौ जांदा है ना रात नूं ए मौत विखाली दे जांदी है हजूर ने इस मौत नूं नित परलों किया कि हर मनुख ते नित परलों आउंदी है ओ केड़ी आउंदी है जदों असीं सौ जांदे हां तां मौत विखाली दे जांदी है दस जांदी है ए मनुख एक दिन सोमन होएगो लांबे गोड पसार एक दिन तू ऐसा समेगा कि कोई तैनू उठाल न सकेगा इसे लई सतपुरश कहंदे हन जदों सौ के उठिए तां इशनान करो भाई शरीर दी पवित्रता लई क्योंकि मौत भी खाली दे जांदी है ओ भी मौत जो नित परले है ए नींद है ते जदों श्वासां दी गंढ खुल जांदी है इसनू नमित परलों के है कि जदों श्वास समाप्त हो जान तां मनुख अगला कदम नहीं पुट सकदा उत्थे ही मिट्टी दी ढेरी हो जांदा है उच्चारण करो श्री घर घर ए हो पहुंचा सदड़े नित पवन घर घर ए पहुंच है सदड़े पै रहे हन जिमें बाबा नन सिंह जी महाराज कलेरा वाले क्या करते सन भाई ए सदरे गुरमुखा नू अमृत वेलो भी पैंदे हन उठ भाई गुरु के लाल ए मनुच्छा जन्म भी तेरा अमृत वेला है ते अमृत वेले उठ के इशनान कर सचखंड दे द्वार खुल गए हन गुरु जागदा होवे तू सुता होवे ता फिर प्रसन्नता नहीं भाई जे गुरु दी खुशी माननी है तो अमृत वेले उठ इशनान कर ते फिर सत संगत विच बह के जप श्री वाहे गुरु ताके तेरा जीवन सफल हो जावे तेरा जमना मरना मिट जाए इसलिए घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदनहारा सिबरी ए सदा की कह रही हन ए सदा कह रही भाई सदन हारा सिबरी जिस वाहेगुरु ने तैनू भेजिया ना उसने सदना भी है मनुख एवें नहीं संसार विच आ गया अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर का कल्या होया है हजूर दी बाणी कह रही है जिहा चीरी लिखिया तेहे हुक्म कमाए कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए ते जेड़ा कल्या होया आउंदा है जेड़ा किसी दा भेजिया होया आउंदा है ओ कोई जिम्मेवारी लैके आउंदा है कोई ड्यूटी लैके आउंदा है कोई काम करन लई आउंदा ते अकाल पुरख वाहिगुरु ने भाई सानू संसार विच भेजिया है भाई तू जाके सिमर सिमर नाम बारंग बार उस प्रभु दा सिमरन कर इसलिए तैनू सोना मनुच्छा जन्म प्राप्त होया एवें नहीं मिल गया ए बड़ा अमोलक जन्म है भाई लख 84 परम दिया दुर्लभ जन्म पायो एक 10 बंदिया दी क्यों भुगतानी होवे कितना समा लग जांदा है ते जिदी वारी 84 लख दे बाद आई होवे एक एक जून दी उम्र गिणीए ता कई जूना विच ऐसियां भी हन जिन्हां दी हजार हजार बरस उम्र है लख लख बरस उम्र है जिवें पहाड़ां दी ब्रिशां दी कई कई हजार बरस ते हजूर कहिंदे ने भाई कितने युगां दे बाद तैनू ए मनुच्छा जन्म मिलिया होवेगा अंदाजा ला लै कि लख 84
84 ਲੱਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਵਾ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਮੂਰੇ, ਓਏ ਮੂਰਖ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਵਾਸਦੇਵ ਤੁਧ ਵਿਸਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਲੈਸੀ ਮੂੜੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਵਸ ਫੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕੇੜਾ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਵੇਂਗਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਇੱਥੇ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਚਾ ਪਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਪੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਪੱਕਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਘੜਾ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਟਨਕ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਬਈ ਕਿਤੇ ਕੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕਣ ਲਈ ਆਇਆ ਬਈ, ਤੇਰਾ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ

ओ मौसम, ओ घड़ियां, ओ पल, ओ समा सफल है जदों चित आवे श्री वाहिगुरु। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे पास आके ब्राह्मणा ने बेनती की, महाराज जिस तरह शास्त्रां विच शुभ अशुभ दिन गिने जाते हैं आप दे मत विच भी हैं, तां धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहिंदे ने भई साडे मत विच तां ओ मौसम, ओ समा, ओ दिन, ओ घड़ियां, ओ पल सफल हन जदों परमेश्वर दा नाम चेते आ जावे। पले दिवस पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग, ओ वेला को हों बल जाऊं, जित मेरा मन जपे हरि नाम।

हो कदम सुहावने हन, जो कदम सतसंगत वाले जाते हैं, जो कदम परोपकार ले किसी की सेवा ले किसी के भले ले उठते हैं।

अकाल पुरख वाहिगुरु दी सिफ सलाह हो रही है। ओ रसना चंगी नहीं जिहड़े गंदे गीत गाउंदी है, माड़ा बोलदी है। आख्या ऐसी रसना कट जाए जिहड़ी गुरु की बाणी नहीं बोलदी। नैन ना देखे साध से नैन बेहालिया, करण ना सुनहे नाद करण मुंद घालिया। रसना जपे ना नाम तिल तिल कर कटिए, हरे हां जा विसरे गोविंद राय दिनों दिन घटिए। ते भाई उना दा हर दिन नवियां खुशियां लैके आउंदा है जो अकाल पुरख वाहिगुरु दे गीत गाउंदे हन, जो दे गुण गाउंदे हन, जो दी सिफत सलाह करदे हन, इसलिए हजूर बख्शिश कर रहे हैं।

अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूढ़ नहीं पायो, भिन्न भिन्न सब हूँ।

0: सब गुरु
1: बिजे पूर्व देवना जिस दी वस्त तिसे घर आवे बैठा सोधी पातशाह
0: रामदास सतगुरु
1: जंतो मुन ध्यान धरे फिरत सकल जग कभु को पावे आत्म प्रकाश को वेद बाणी सहत ब्रंच जस गावह जंको शिव मन गहना तजात कबिलास को जंको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटाजूट पेख किए फिरत उदास को सो तिन सतगुर सुख भाए कृपा।

गुरु साजी से निवाजी सात सिंह जी हो राग श्री राग तुहाडी सेवा विच पढ़न की सेवा कर रहे हैं। श्री राग का जो चलन है वह दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनों असं ऋषभ कहने हैं, सा तो बाद दूसरा स्वर रे है, उसनों ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान सुर है। और पंचम जिसनों पा कहने हैं, सारे गामा पा, पंचवा सुर जो है वह इसका वजीर सुर है। इन दोनों सुरां के सुमेल के नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम हुआ, जिस तरह

जो पड़ताल है जिसनू पड़ताल गुरु मातंत्र कहा जाता है उसका भाव है कि ताल नू बदल के गायन करना। जिवे हुण पहला जो रहाओ है वह ध्रुपद ताल च आया है, हुण ताल बदल गया। इस नू असी दीप चंदी कहने हैं, 14 सुर मात्र दा ताल है, ताल बदल गया है, इस नू पड़ताल कहांगे। और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने, तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लाओ।

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहते ने तदरदानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। ये ग्रंथ जो है सर्वलो प्रकाश की बाणी है। धागड़ी धर्म धृग तांग दागड़ी दिम दिरना, बागड़ी ब्रिकते बांग कागड़ी तोम तोम तोम तिरना, दागड़ी दे ताल कागड़ी कोम किरना। इस साहब जी ने तराना गाया तो इसका मतलब है दागड़ी दे ताल कागड़ी कोम किरना। यह अर्थ है कि कुम किरना तुसी पलटे लगाने सरगमा लगा और ताना लगा कुम किरना नाल दे ताल दागड़ी दे ताल के तुसी ताना लगाते हुए ताल का ना ख्याल भुल जाना। ताना भी लगाओ और ताल के अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना, बाणी नू राग विच ताल विच गायन करना, इसनू कीर्तन कहिंदे। जे राग ते ताल कढ दिओ बाणी पढ़ी जाओ वह कीर्तन नहीं हैगा, पाठ हैगा। तो पाठ जिहड़ा है वह राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है, राग और ताल दे विच गायन करना जिहड़ा है वह कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे दागड़ी दे ताल, ताल दे विच तुसी घुम किरना नाल पलटे लगाओ सरगमा करो और ताना लगाओ। उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं।

इस माया ने सब नु मोह रखिया है। किसे दा भी मन माया तो परे नहीं जाता। कोई विरला ही इस गल नु बुझदा है, समझदा है। तब पिता जी कहन लगे, नानक तेनु उपदेश देण वास्ते

खेती मैं कर रहा हां, इस तो मैनू वेल नहीं, जे वेल मिले तो खेतों में आके भी खेती करा। मन हा

ये वेखे सन तन ते कपड़ा नहीं बुरी हालत और गुरु साहब तो गए ही इसे करके नहीं चढ़िया सोधन धरत लुकाई जदों बेबे नानकी ने दोनों साहबजादियां नूं अग्गे कीता तां गुरु जी ने आख्या सी कि जेकर लाल सब रब दे दुखी दिसण करां की मैं दोहां दुलारां। इस वेले मैनूं उस वाहिगुरु परमात्मा दे लाल जो इंसान पैदा कीते ने उसदे पुत्र ने उसदे बच्चे ने ये सब दुखी दिस रहे हैं।

जलती सब पृथ्वी दिसे आई, सारी पृथ्वी जलदी हुई नजर आई। तो फिर चढ़िया सोधन तर च लकाई, उन्हें इंसानों नु दुखी वेख्या सी, कारू दे राज विच भुखी वेख्या सी, भोजन कीते तो बिना ही सौंदे सन बहुते लोग।

Maya. और ढंडोरा पिटवा दिता सी कि किसी को एक भी पैसा निकल आया तो उसनु सजाए मौत हो जाएगी। कारो दे कहर तो सब डरते सन। कुछ दिन जदों कोई पैसा ना आया

राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा होए, इसकी घरवाली भी बहुत धर्मात्मा सी। वड़ी राती उठ के सतसंगत विच जाके बैठना ते फिर राजे दे उठन तो पहला पहला आके फिर आके सौ जाना। इसे तरह कितना समा सतसंग करती रही, नाम दा रंग चढ़दा रहा, अकाल पुरख वाहेगुरु की कृपा होंदी रही। क्योंकि रंग लागत लागत लागत है, जेहो जी कोई संगत विच बैठदा है हौले हौले ओहो जिहा ही रंग चढ़ जांदा। क्योंकि पंछी जेहो जे ब्रिश ते बैठेगा ओहो जे ही फल प्राप्त होणगे। जे अंब दे ब्रिश ते बैठा तां अंब ही मिलने हैं। इसे तरह मनुख दा जीवन जे शाकत पुरशां विच जा पवे तां पापां दा भागी बन जांदा, जे सत संगत विच जांदा तां इस दे पुन वध जांदे हैं। राजा हरिचंद दी घरवाली रोज सत संगत विच जाके गुरबाणी दा कीर्तन सुनना, आनंद मानना, क्योंकि ए भी आत्मा दी खुराक है। जिस तरह साडे शरीर नूं खुराक दी लोड़ है, साडी आत्मा नूं भी परमेश्वर दे नाम दी लोड़ है। ओ नाम दा भोजन छकदी है जो साडे अंदर, जिदे सदके साडा शरीर चल रहा है ना, उसनूं ही भोजन दी भुख लगदी है। पर ओ भोजन नाम दा छकदी है। उचारण करो श्री तो तारा राणी, सतसंगत विच रोज जाना ते राजे दे जागन तो पहला पहला आके फिर सौ जाना। अज अचानक राजे दी जाग उगड़ी तां की तकिया कि राणी नहीं सुती। मन विच शक पैदा हो गया कि किधर जांदी है अद्धी राती उठ के। मन विच सोचिया जितने तक कोई अखी ना वेख लईए तां उस तरह एवें किसे नूं कलंक लाउणा या कह देना चंगा नहीं है। चंगी तरह छान बीन कर लैनी चाहीदी है वी किधर जांदी है। तां राजा अज सुता नहीं पर उवें ही कराड़े मारन लग गया ते राणी ने समझा वी हुण आराम विच हो गया है। ते राणी सतसंगत वल तुर पई। मगरे मगरे राजा जा रहा है, राणी जदों सतसंग विच जा पहुंची ते मन नूं त्रयास आया भई चलो किते माड़े पासे तां नहीं ना जांदे, किते माड़े पासे तां नहीं ना गई। अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दी भगती विच ही जुड़ी हुई है। पर राजे ने राणी दी एक खड़ाऊं चुक के घर ले आंदी। भई पुछांगे भई तेरी दूजी खड़ा किथे है, ते राजे ने आके संदूक विच उस खड़ा नूं बंद कर दिता। राणी जदों कीर्तन सुनदियां कीर्तन दी समाप्ति होई ते बाहर निकली तां एक खड़ा दा जोड़ा पिया। बड़ी डरी कि मैं राजे नूं की जवाब देवांगी, जदों पुछेगा भाई दूजी खड़ा किथे है मैं जवाब की देंगी। मुड़ के जाके साध संगत विच जाके बेनती कीती कि साध संगत अरदास करो मेरी दूजी खड़ाऊ मैनू मिल जावे, मेरी पत रह आवे, मेरी इज्जत रह आवे। जे राजे कोल ए पोल जार हो गया तो राजा मेरे ते शक करेगा। उचारण करो श्री वाहे। सारी संगत ने जदों अरदास कीती तां अकाल पुरख वाहिगुरु ने ओह जी पुरानी खड़ाव परमेश्वर ने भेज दिती। कोई पछाण नहीं सकदा कि ए पुरानी है जा नवी है। राणी आके उसी तरह रोज दी तरह सौ गई। सवेरे जदों राजा उठिया तां कहन लगा आ जरा अपनिया खड़ावां तो दे, मेरिया हैं नहीं इथे नेड़े ते मैं इशनान कर दूं। उचारण करो श्री वाहिगुरु।
ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਖੜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਾਵ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੇਟੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜਾਵ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਖੜਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਖੜਾਵ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਖੜਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਏ? ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਆਏ। ਆਖਿਆ, ਰਾਜਾ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ।

जैसे सर्प दी आरजा है किसे काम नहीं, और बड़ी वड्डी आरजा होंदी है सप दी। अजगर सप्पां दी सैकड़े हजारां वर्ष आरजा होंदी है। आख्या साकत दी भी इसे तरह ही आरजा, जिस तरह ओ किसे काम नहीं आउंदे, बिना नाम तो मनुख भी किसे काम नहीं है।

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न हो वई जे सोची लखवार चुपै चुप न हो वई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सहस्या

तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावे तिलका मान सुनिया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन।

आखह ब्रह्मे आखह इंद आखह गोपी तय गोबिंद आखह ईश्वर आखह सिद्ध आखह कीते कीते बुद्ध आखह दानव आखह देव आखह सुर नर मुन जन सेव कीते आखह आखण पाहे कीते कह कह उठ उठ जाहे।

गावह तोहनो पौन पणी बैसंतर, गावह राजा धर्म दुआरे, गावह चित्त गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावह इंद इंदासन बैठे देव त्या दर नाले, गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले, गावन रत्नो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा गावह खाणी चारे, गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे, से ईतनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बिचारे, सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है, पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेख कीता अपना जिवत सिदी वडियाई, ज्योतिष भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पातशाह साहा पातशाहिब नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह विभूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद्ध अवरा साद, संजोग विजोग दोयकार चलावह लेखे आवह भाग, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फरमान, ओह वेखै ओना नदर न आवै बहुता एहो विडान, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, आसन

भाग हुआ गुरसंत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर मह पाया, सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हौ कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ। तनासरी महला पहला, घर पहला, चौप दे इको ओंकार, सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जियो।

मन बेदया दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई रहाओ। अगम गोचर गलख पारा, चिंता करो हमारी, जलथल महियल भरपुर लीना, घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदर छावां तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावां नित तेरे।

अशूत हैं, अलोक हैं, अशोक हैं, अकर्म हैं, अपर्म हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अबाह हैं, अगाह हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं। भुजंग प्रजात छंद नमो सर्व माने समस्ती निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ती विभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरम परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरम परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरम परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता भेखी अपरमी अभोगी अभुगते नमो जोग जोगेश्वरम परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहं नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नाने नमो मंत्र मंत्रं नमो यंत्र यंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे रूपे समस्त तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद करता अधो अर्ध अर्धं अगं ओ

स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रभा है, सुयुगत सुधा है, सदैव स्वरूप है, अपेदी अनूप है, समस्तोपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तुल सलाम है, सदैवल अकाम है, निर्बाध स्वरूप।

0: अपने परत करें प्रतपाला अदर तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई अदर तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई
1: भाई जी का हसा।